0: करो 416-477-2040-416-477-2040। वेरी गुड। ओके सो एक दो चीजा मैं पहला थोनों नानक रेनोवेशन दा मैसेज दवा। नानक रेनोवेशन तो करा लेना काम, देखियो सी थोड़े घर दी जिहड़ी टॉवर वधदी, तुसी आप कहोगे नवी यार पहला नंबर दिंदे ते हुण नूं ऑलरेडी बल्ले बल्ले होनी सी कोई ना, नेवर टू लेट। घर दी वैल्यू जे तुसी वधाउणी है यां एक्स्ट्रा इनकम लई लीगल बेसमेंट तैयार करवाउणी होवे यां अपने घर नूं नवी अते खूबसूरत लुक देनी है तां संपर्क करो नानक रेनोवेशन दे नाल। लीगल बेसमेंट, बेसमेंट फिनिशिंग, कॉन्क्रीट ड्राइववे, पैटियो या कोई भी रेनोवेशन दा काम नानक रेनोवेशन। एक्सपीरियंस टीम समय सिर काम करदे ने, बहुत ही रीजनेबल रेट। फ्री एस्टिमेट लई कॉन्टैक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293 नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपनिआं नूं पूरा करनगे। क्या बात है, नानक रेनोवेशन चकते फटे। इन्हां नूं कुछ इंपलॉइज भी लोड़ है, काम लभ रहे हो एवं ना करी चलो नवी वेले हैं नवी काम है नहीं। सो इन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्करा की लोड़ है, सो तुसी कंस्ट्रक्शन का काम जानते हो, जॉब लभ रहे हो, पे वधिया। 416-902-9293 416-902-9293 नंबर है नानक रहनो 416-902-9293 दे उत्ते तुसी कॉल इन्हें जरूर करो। ते गुरकर्म ढींडसा गड्डियां घरां दी इंश्योरेंस दे विच वधिया डिस्काउंट चाहुंदे हो, गुरकर्म ढींडसा ने साडे बड़े लिसनर्स दी इंश्योरेंस घटा के दित्ती है पिछले कुछ समय च, तुसी भी एक फोन कॉल दे नाल पैसे सेव करने हैं तां 416-876-4605 गुरकर्म ढींडसा 416-876-4605। सब्जी मार्केट नाले रेस्टोरेंट है नाले ग्रोसरी स्टोर है। मैं हमेशा दसदा हुंदा कि खूबी यह है कि 24 घंटे 7 दिन खुलते हैं। सब्जी मार्केट से पहुँचो, हर तरह दियाँ सब्जियाँ ताज़ियाँ, गोल कद्दू, चप्पन कद्दू, टिंडो, हरे मटर, फ्रैश साग, बाथू, तुसी पहुँचो तो कहोगे नवी यार चाहे सवेरे 5 बजे जाओ, रात नूं तुसी 2 बजे चल जाओ, वधिया चीज़ है। 24 घंटे ओपन 10 लोरमेल गेट सैंडलवुड मैकलॉगलिन या 10970 ब्रैमली रोड ब्रैमली कंट्री साइड। रेस्टोरेंट भी है, बाय वन गेट वन फ्री चिकन लेग बिरयानी ते फिश पकौड़ा। सब्जी मार्केट साढ़े नाल जुड़ चुके एक बार फिर सुख भाजी ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड ऑफर तो। हाँ जी भाजी वेलकम अगैन।
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवी भाई जी। बिल्कुल इस वीकेंड के उपर जी बड़ी सेल लगन जा रही है, कैनेडा डे कैनेडा डे कैनेडा डे जी सेल लगन जा रही है। साल दिया सब तो लोएस्ट प्राइसेस से नाल अपलायंसेस से जेडे तुहानू तोहफे परिवारों नूं दित्ते जाणे आ। पंजाबी लैणां दे जिन्ने भी लिसनर परिवार साडे कोल इस वीकेंड के उपर पहुंचणगे, किसी भी तरह की तुसीं फर्नीचर की बाइंग करनी चाहते हो, मास्टर बैडरूम का बैडरूम सैट लेना चाहते हो, प्योर लैदर के पावर रिकलाइनर चाहिए ने, कस्टमाइज कनेडियन मेड सोफा सैट चाहते हो, तो लोएस्ट प्राइस मिलनी है इस वीकेंड के उपर। फ्राइडे ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ 6885 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੋਮਕਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 6885 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਸੇਲ ਸੇਲ।
0: क्या बात है, हो जाओ रेडी कैनेडा डे सेल्स लई बई, ते डीला भी तोहफे भी सारा कुछ कहते होंगे कि ऑल इन वन थोड़ा मिलेगा। सो एक बार तुसी जरूर ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड होम फर्नीचर से हो जाओ रेडी, पहुंचो तो वधिया डीला लो। मैं लाना सीगा यार गाना, एक तो 2-4 गाने आए पर नवे मुंडे जिहड़े साडे मित्र ने इन्हां दे गाने पता नहीं क्यों गाल गुल कढ दिंदे थोड़ी जी यार। मैनू ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼, ਨਾਲੇ ਗਾਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਐਫ ਦਿਸ ਐਫ ਦੈਟ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਗਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਲਿਬ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ।

0: संतोष जी चलो शुरू करते हैं। संतोष जी बताएंगे कि कौन है सिंगर?
1: ए है गया हंसराज।
0: हंस
1: जी
0: आवाज पहचान ली संतोष जी?
1: जी बस फीमेल वाली नहीं पता चला मेनू।
0: ठीक है मेल वॉइस ओवर हंसराज हंस
1: जी।
0: संतोष जी सुने को?

0: लॉकटोपा है गलत लॉक टाइम है नी हंसराज हंस जी श्योर है
1: 100% अमन जी आज तो मैं बिल्कुल सही हां
0: मतलब तोड़े को चांस हैगा जे तुसी चेंज होना
1: मेनू ते हंसराज हंस ही लगदे अमन जी बाकी सारे नु पुछदे आ लै
0: जगी जी तुसी दसो की हैगा तोड़े सामने
2: लवली निर्माण है जी प्रवीण पाड़िया ने
0: अच्छा कमल तुसी की कहोगे कमल जी
3: अमन जी अमन जी सत श्री अकाल मेनू नहीं पता मेनू तोड़े नाल एक नंबर चाहिदा सी
0: केड़ा जी
4: जशनदीप
0: जशनदीप कह रहे हो ना
4: हां जी हां जी बड़ी कसाई जी एल्बम बहुत वधिया सी सारी
0: अच्छा जशनदीप तुसी कहंदे हो ते 17 नंबर हैलो
5: हां जी सत श्री अकाल जी
0: सत श्री अकाल जी
5: लवली
0: चलो पछाण लो आवाज फिर

0: हाँ जी महेंद्र, कौन है दसो?
1: हेलो भाजी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी।
1: ओके, मैनू एरे बारे ने पता, मैं तो डोर एंड विंडो वाले दा भाजी अपने डोल बणी मेन दिता।
0: ओ चक दते फटे उड़ा दते, तो ते करो शवानू नु कॉल, फाइनेंसिंग नाले टॉप दी सर्विस ते थानू क्रेजी बंदा मिलूगा जिहड़ा एन विंडोज लई पागल है, बस थानू समझाऊगा। नंबर है 416-206-3200, राइट विंडो फोर्स 416 206-3200, ठीक है?
1: थैंक यू,
0: थैंक यू। ते दस्यो जी लाल लाला कीती पिया कौन है? हेलो परविंदर।
2: हां जी भाजी।
0: हां जी
2: भाजी, लवली नरवाना ता प्रवीण भाटा, बस ओदा मेनू कुमार खान नु भी लगदा,
0: कुमार खान नु भी लगदा वैसे उना नु। हां जी हेलो,
3: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी,
3: लवली नरवाना जी
0: शोर है, पर ए ता कुमार खान नु कही जांदे संतोष।

0: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: Nobel Fresh Foods शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच Nobel Fresh Food फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा Nobel Fresh Foods 2945 Sandalwood Parkway East दूसरी लोकेशन 20 Gillingham Drive in Brampton फोन 2898010566 Nobel Fresh Foods
3: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वे कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
5: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल बिल सेखू
6: जसविंदर कौर तगर दी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने साडी लाइफ इंश्योरेंस ट्रक ड्राइवर्स लई डिसेबिलिटी ते क्रिटिकल इलनेस दे चंगे प्लान्स साडे पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस ते बच्चियां लई RESP तुसी वी रहो बेफिकर ते कॉल करो जसविंदर कौर तगर नू 6477652340 647-765-2340
7: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: 630.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80. हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव ट्रैवला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों ना जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निज साहब वतनों दूर प्रोग्राम थोड़े लिए पेश करेंगे। किरण जी भी आउणगे, इंडिया तो खबर होनगियां, इधरली उधरली गल्लां मार दिओ। 2 घंटे का सफर अपना चलता रहेगा। पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज 5:36 सूरज आया, 9:02 चले जाना। मामा चंद सानू बड़ी महत्ता देने की लोड़ नहीं, लवारस जहा है घरे, रात नू आएगा, दुपहरे आएगा, सवेरे आएगा, इहदा कोई यकीन जहा है नहीं। अज अगे चल के 3:27 ते इहने आउणा, 3:27 ते असीं कहिंदे नहीं इह तां रात नू चढ़दा, इहदा कोई पता नहीं कदों किधर नू चढ़ जाणा। 1:32 सवेरे चले जाणा इहने। एनीवे अज दा तापमान 26 डिग्री, मोस्टली सूरज चमकेगा। कल सूरज चमकेगा, तापमान 27 डिग्री। थर्सडे छतरी छत वाली लोड पेगी, बारिश पेगी, तापमान 21 डिग्री। फ्राइडे 25 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। संडे 26 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। संडे 28 डिग्री सूरज चमकता रहेगा। सुखी जी प्रोग्राम स्वागत है, की हाल है?
1: थैंक यू देव जी। सब तो पहला तो अनुते सारे लिसनर्स नू मेरे वलो प्यार भरी सत श्री अकाल एंड वेरी हैप्पी ट्यूसडे जी।
0: वैसे जे देखा जाए प्यार भरी सत श्री अकाल हुंदी आ, ए तां कह नहीं सकदा। लो सुखी जी मेरे वलो बड़े गुस्से वाली सत श्री अकाल। एनी हाउ नाइस वेदर,
1: वेरी नाइस वेदर।
0: अच्छा होर गल्लां दी गल्लां, हालात जिंदगी दे जहे जे मर्जी होण, पर जदों सूरज चढ़िया हुंदा दिन जा वधिया हुंदा, यू फील गुड अबाउट
1: इट 100%।
0: तो बंदे नू गुड फील भी करना चाहिए। यू आर राइट, यू आर राइट। कई गल्लां करदे हुंदे आ नेगेटिव पॉजिटिव दीआं, हां नेगेटिव आ पॉजिटिव आ, इट्स ओनली वन थिंग। उहनूं तुसीं नेगेटिव लैणा पॉजिटिव लैणा ते तुहाडे ते आ।
1: यस,
0: एनी भी नेगेटिव कोई होर चीज आ, पॉजिटिव कोई होर चीज आ, सेम थिंग।
1: यस,
0: उहनूं लैणा किवें आ, किहड़े पहलू तों लैणा, इह अपणे ते डिपेंड करदा। एनी वे तुसीं काफी लंबे समय तो रियल स्टेट दीआं सेवावां दिंदे हो, पहली लिस्टिंग ठोक के दे दो।
1: हांजी देव जी, जे कोई अपना लिसनर आपां नूं बहुत सारियां कॉल्स आंदियां कि ब्रैम्पटन या पील रीजन दे विच कोई वधिया जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दसो, तां बहुत वधिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैके आई आ 20 मॉल एरिया दे विच। सो हाईवे 410 तो बहुत ही नेड़े हैगी, लिटरली 5 मिनट्स की ड्राइव दे उत्ते डीटैच घर आ, 4 बेडरूम का घर आ, 2 बेडरूम की फिनिश्ड बेसमेंट हैगी आ, लीगली फिनिश्ड बेसमेंट आ। प्रॉपर्टी दे उत्ते कोई कम नहीं करन वाला, फुली फुली अपग्रेडेड एंड फ्रेशली रेनोवेटेड हैगी आ। रूफ तो लैके फर्नेस तक एवरीथिंग इज न्यू। तुसी घर देखना चाहते हो या कोई क्वेश्चन है, सुखी कौर 6474087066। जे तुसी अपने रहने गुड इनफ, तुहानू बेसमेंट चो ऑलरेडी इनकम आ रही है। जे तुसी इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो तुहाडी मॉर्गेज निकलन तो बाद भी तुहाडे कोल पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। इदा दी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, गिव मी अ कॉल एट 6474087066 6474087066।
0: खबरों च खबर आई है आस्ट्रेलिया दे विच ऑलमोस्ट 3 टन ऑफ कोकेन फड़ी है। 3 टन जिहदी अमेरिका अमेरिकन डॉलर विच प्राइस है $572 मिलियन। फड़ने वाले जेहड़े बंदे आ उहनां दे नाम सुन के तुसीं हैरान हो जाओगे। नहीं जी नाम ही नहीं है, लिखे नहीं अगले ने। पर एक चीज है जो इस तरह की होंगी, यह होंगे भी अपने ही होने। एनीवे जाने आने स्टे ट्यून
2: वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 जा quicktrucklube.com। QTL because we care।
0: Are you ready? इक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040 6474294040।
3: हर महीने मैकेनिक नु पैसे दे दंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नु गोद ले लिया।
4: मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
3: ਵੱਖਰੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਨਿਸਕੋ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਤੇ।
4: ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟਰੱਕਸ, ਟਰੱਕ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
3: ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,
4: ਮਤਲਬ ਜੇਬ ਵੀ ਸੇਫ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸਕੋ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ, ਟੋਰਬ੍ਰਮ ਡੇਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, 7055 ਟੋਰਬ੍ਰਮ ਰੋਡ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਕਾਲ 647-581-9999। ਟਰੱਕ ਐਸੇ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ।
5: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan to see visa services di pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Perth.
5: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ, 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 2898010566 ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan to see visa services si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
7: వేమలా విలేజ్లా విలేజ్ పడది పీయొచ్చ జంట పడదా వేమలా విలేజ్లా విలేజ్ వేమలా విలేజ్లా విలేజ్ పడది। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
1: 6 PM, all drinks 50% off, Tikka Junction Brampton te call karo 647 4290 4040, Tikka Junction Brampton.
2: एक लाइफ है जिसे लव है
3: ये कहते मुझसे सब है,
4: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा दो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अंबड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार नाल दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास ठठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardesradio.com ਜਾਂ www.deshpardestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: First year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
2: ऐसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-457-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
5: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
4: 905-564-6444